0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपकी मेजबान हैं खदीजा शाह और वसीमा आबिद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। खदीजा, दीवान खाना ऐसा गोशा जहाँ कुछ सुनने और कुछ कहने के लिए हम मिलकर बैठे।
1: जी बिल्कुल वसीमा, यही तो है हमारी महफिल दीवान खाना। इसमें शिरकत के लिए सामईन पहले खत लिखते थे, वही खत जो निस्फ मुलाकात कहलाता है।
0: अरे बहन, अब आ गया ईमेल का जमाना। खत के बजाय ईमेल निस्फ मुलाकात बन गई। नया दौर, नए तकाजे।
1: बिल्कुल, इन तकाजों को पूरा करने के लिए आज की इस महफिल में ईमेल के जरिए पैगाम, खत, तस्वीर या वीडियो भेजने का तरीका बताते हैं। सामईन हमारे होम पेज nhk.jp/urdu पर आएं और फिर नीचे स्क्रॉल करके दीवान खाना की तस्वीर तलाश करें।
0: अच्छा अच्छा, वो जो हमारी सब मेजबानों वाली तस्वीर है उस पर क्लिक करना है क्या?
1: जी बिल्कुल, दुरुस्त कहा आपने। अब नए खुलने वाले सफ़े पर दीवान खाना की थंबनेल यानी पहली तस्वीर के छोटे वर्जन की बाएं जानिब पैगामात यहाँ भेजें का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें। अब आप हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं वाले सफ़े पर पहुँच जाएंगे।
0: अरे खदीजा, कोई आसान तरीका नहीं इस सफ़े पर आने का?
1: बिल्कुल है भाई, सर्च इंजन पर उर्दू में लिखें हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं, तो सर्च में NHK का ये सफ़ा आपको मिल जाएगा।
0: सामिन, यहाँ ये याद रखिए कि उर्दू रस्मुलखत में लिखना है आपने हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं, उर्दू रस्मुलखत में लिखना है। और लेकिन अगर हमारे सामने कोई उर्दू नहीं लिख सकते तो उनके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि वो हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu के ज़रिए इस पे तशरीफ लाएं। और खदीजा, अब आगे बताइए कि आगे कहाँ जाना है।
1: जी, इस पेज पर तस्वीर के नीचे दिए गई हिदायत को पढ़ने के बाद फॉर्म की तरफ बढ़ें वाले लिंक

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानों का कोनिचिवा नमस्कार।
1: आवाज की दुनिया के सभी साथियों को रंजना सिंह का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिचिवा। लेकर हाजिर है आपके पत्रों के जवाब, तो कहीं न जाएं, बने रहे हमारे साथ।
0: रंजना जी, आजकल आपने गौर किया होगा कि हर जगह हरियाली छाई हुई है, फूलों की बहार है।
1: हाँ, खासकर गुलाब ट्यूलिप के फूल काफी देखने को मिल रहे हैं, और वो भी तरह तरह के रंगों में।
0: हाँ,
1: मैं भी सोच रही हूँ कि अपने घर की बालकनी में लगा कर देखूँ, कुछ नया करना तो बनता है ना।
0: हाँ भाई, मौसम इतना खुशगवार है कि मन प्रसन्न है, ऐसे में नई नई चीजों में हाथ आजमाना अच्छा रहेगा। मैं भी सोच रही हूँ कि अपने बाल कटवाऊं, अपना कुछ स्टाइल बदलूं।
1: अरे ये भी अच्छा विचार है। वैसे बाल कटवाते समय जमीन पर गिरे बालों को देखकर कभी कभी दुख होता है कि कितने प्यार से बड़े किए थे और अब कूड़े में जा रहे हैं।
0: वो तो है, और भारत में होते तो देखिए बालों से कमाई भी हो सकती थी।
1: अरे हाँ, इससे जुड़ा एक वीडियो मैंने हमारी वेबसाइट पर देखा कि कैसे लोग अपने बाल बेचकर कमाई कर रहे हैं। विग आदि के लिए भारत से बड़ी मात्रा में कैश निर्यात होते हैं, और इन काले बालों को ब्लैक डायमंड तक कहा जा रहा है।
0: बताइए, ये भी एक कारोबार है। लेकिन देखिए, मेरे बाल तो इतने हैं भी नहीं कि इन्हें बेच सकूं, उल्टा मुझे खुद बालों की जरूरत है।
1: अगर श्रोताओं को इस विषय में रुचि हो तो जरूर देखें हमारी यह वीडियो क्लिप। बहरहाल समय निकलता जा रहा है, तो लेते हैं श्रोताओं के पत्र।
0: जी हाँ, और सबसे पहले है सुरेश अग्रवाल जी का पत्र। लिखते हैं दिनांक 3 मई के चरी के देश से के अंतर्गत अभिनेता पंकज त्रिपाठी से की गई भेंटवार्ता का तीसरा और अंतिम भाग भी सुनने का अवसर मिला। पूरी बातचीत का सार यही रहा कि पंकज जी एक गहरे यथार्थ से जुड़े संवेदनशील और सरल व्यक्तित्व के धनी इंसान हैं। सिनेमा और OTT प्लेटफॉर्म के संबंध में उनके संतुलित और विचारोत्तेजक दृष्टिकोण विशेष रूप से प्रभावित करने वाले रहे। ऐसा भी प्रतीत हुआ कि व्यक्तिगत स्तर पर OTT उन्हें उतना आकर्षित नहीं करता जितना पारंपरिक सिनेमा। समग्र रूप से ये साक्षात्कार अत्यंत रोचक, सारगर्भित और सुनने योग्य रहा। और लिखते हैं कि आज के अंक में फेसबुक से श्रोता मित्र उमेश शर्मा की टिप्पणी भी सुनवाई गई। उमेश जी मेरे समकालीन श्रोताओं में से एक रहे हैं, और मुझे भली भांति स्मरण है कि एक समय कैलाश नगर नारनौल हरियाणा के उमेश शर्मा रेडियो जगत में विशेष पहचान बनाए हुए थे। उनका उल्लेख सुनकर ऐसा लगा मानो कोई खोई हुई अमूल्य धरोहर पुनः प्राप्त हो गई हो।
1: सुरेश जी, पंकज त्रिपाठी जी के साथ भेंट वार्ता का तीसरा अंक भी आपने सुना, इसके लिए आभार। पंकज जी की बातें सच में दिलचस्प रही, और हमें खुशी है कि उनके साथ विशेष बातचीत आप सब तक पहुंच सके। उमेश शर्मा जी वही हरियाणा वाले हैं या फिर कोई और, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उमेश जी जरूर अपने बारे में बताएंगे।
0: और बेहतर होगा अगर वे इस कार्यक्रम के लिए ईमेल से अपना परिचय लिखकर हमें भेजें। तो उमेश जी, इंतजार है आपके पत्र का।
1: जी, अब ये अगला पत्र है हरि बालाकृष्ण जी का। लिखते हैं, पिछले कुछ साल से मैं भारतीय समय अनुसार रात 9 से 9:20 तक आपके हिंदी प्रसारण का दैनिक श्रोता हूँ। मैं विशेष रूप से शनिवार का इंतजार करता हूँ जब साहित्य सरिता का प्रसारण होता है। अब तक मैंने सभी कहानियाँ इतनी बार सुन ली है कि याद हो गई हैं। मेरी सबसे पसंदीदा कहानी है मकड़ी का तार और पत्थरों का कोया।
0: हरी जी, हमारा प्रसारण सुनने के लिए धन्यवाद। लगता है कि आपको साहित्य में रुचि है। आगे भी सुनते रहें और हमें लिखते रहें। और भी तरह तरह की सामग्री हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, तो उनका भी आप आनंद लें।
1: जी हाँ, और हमें अपनी राय से अवगत भी जरूर कराएं।
0: बिल्कुल। और अब देखिए, अगला पत्र है रामकुमार नीरज जी का, आरा बिहार से। लिखते हैं, हिंदी सेवा की वेबसाइट पर ये रिपोर्ट कि शोधकर्ताओं ने पूर्वोत्तर जापान के तट पर आई सुनामी

0: मिकी गति का किया आकलन केवल एक प्राकृतिक घटना की सूचना नहीं देती, बल्कि हमें प्रकृति की अपार शक्ति और मानव जीवन की नाजुकता का गहरा एहसास कराती है। पूर्वोत्तर जापान में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद मात्र 20 मिनट में सुनामी की लहरों का तट तक पहुंचना, ये दर्शाता है कि आपदाएं कितनी तेजी से इंसानी जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ ही पलों में सामान्य चल रहा जीवन भय, अनिश्चितता और संघर्ष में बदल सकता है। इस समाचार की सबसे बड़ी गंभीरता यही है कि जब धरती कांपती है और समुद्र उठ खड़ा होता है, तब इंसान की सारी तकनीक, संपत्ति और योजनाएं बहुत छोटी दिखाई देने लगती हैं। प्राकृतिक आपदाएं मानवता को भीतर तक चोट पहुंचाती हैं। आपदा के बाद लोग लंबे समय तक डर, मानसिक तनाव और असुरक्षा की भावना के साथ जीते हैं।
1: ये बात तो है, आपदाएं न केवल आर्थिक नुकसान करती हैं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी चोट पहुंचाती हैं।
0: जी, और रामकुमार जी आगे लिखते हैं कि इस रिपोर्ट में शोध दल द्वारा किया गया सिमुलेशन ये भी बताता है कि विज्ञान और शोध मानवता की रक्षा के लिए कितने जरूरी हैं। यदि समय रहते चेतावनी मिले, लोग सुरक्षित स्थानों पर तुरंत चले जाएं और प्रशासन सतर्क रहे, तो अनेक जीवन बचाए जा सकते हैं। ये रिपोर्ट हमें सिखाती है कि प्रकृति के सामने घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता, तैयारी और एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता ही सबसे बड़ी ताकत है। अंततः ऐसी आपदाएं हमें याद दिलाती हैं कि इंसानियत की असली पहचान संकट के समय सामने आती है, जब लोग एक दूसरे का हाथ थामते हैं, राहत पहुंचाते हैं और टूटे हुए जीवन को फिर से खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तभी मानवता सच में जीवित रहती है।
1: बहुत ही सटीक आकलन किया है राम कुमार जी ने। प्रकृति की ताकत के आगे मनुष्य बेबस होता है, लेकिन अगर तैयारी और एकजुटता के साथ मुकाबला किया जाए तो किसी तरह से उस पर पार पाया जा सकता है। जीता तो नहीं जा सकता, लेकिन जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सकता है।
0: हाँ, और जापान से यही सबसे बड़ी सीख मिलती है और इसका प्रसार पूरी दुनिया में होना चाहिए।
1: अब देखिए, भुवनेश्वर ओडिशा से चिन्मय होता जी का पत्र है। लिखते हैं, मैं आज सुबह ही होकाइदो की 14 दिन की यात्रा से लौटा हूँ।
0: अच्छा,
1: यह जापान की सुंदर भूमि और अद्भुत लोगों की मेरी तीसरी यात्रा थी। 2012 में मैंने होनशु द्वीप का भ्रमण किया था। 2017 में मैं ओकिनावा और होनशु के कुछ स्थलों पर गया था। मेरी यह नवीनतम यात्रा पूर्णतः होकाइदो के लिए आरक्षित थी और मैं पहाड़ों, प्राकृतिक दृश्यों और शहरी परिदृश्यों से मंत्रमुग्ध हो गया। मेरे पास जापान में चार चीजें देखने की सूची थी, माउंट फूजी को देखना, चेरी ब्लॉसम का आनंद लेना, और मैंने इन दोनों को पूरा कर लिया है। मेरे दो और सपने हैं, सुमो का खेल देखना और काबुकी थिएटर का प्रदर्शन देखना।
0: अच्छा,
1: मैं 1980 के दशक से NHK का एक उत्साही श्रोता रहा हूँ और मैंने आपके स्टेशन को कई रेडियो श्रोता रिपोर्ट भेजे हैं और बदले में सुंदर तस्वीर वाले पोस्ट कार्ड प्राप्त किए हैं। मेरी यात्रा ने मुझे एक बार फिर रेडियो जापान की ओर लौटने और आपको लिखने के लिए प्रेरित किया है।
0: अरे वाह चिन्मय जी, कितनी बार आप जापान आ चुके हैं, और मुझे लगता है कि रंजना जी हम लोगों से भी बहुत ज्यादा घूम और देख चुके हैं।
1: हाँ, सही कहा। आगे लिखते हैं, मैंने पंकज त्रिपाठी के साथ साक्षात्कार का बहुत आनंद लिया और उन्होंने काबुकी थिएटर की मेरी सुप्त इच्छा को और तीव्र कर दिया। वास्तव में वह एक महान अभिनेता है जो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए लाखों लोगों के प्रिय है। जापान यात्रा के दौरान जब भूकंप आया और जिस क्षेत्र में मैं था उसे सुनामी ने खतरे में डाल दिया, तो मैं नवीनतम रिपोर्ट एकत्र करने के लिए आपके प्रसारण की ओर लौटा। NHK के साथ मैंने 56 वर्ष की उम्र में वैसा ही आश्वस्त महसूस किया जैसा मैंने एक किशोर के रूप में महसूस किया था। लंबे समय से चले आ रहे बंधन को जीवित रखने के लिए रेडियो जापान का धन्यवाद। क्या मुझे जापान के बारे में अपनी पांचवी इच्छा भी जोड़नी चाहिए, एक बार आपके स्टूडियो में आना और आप महान लोगों से मिलना?
0: अरे चिन्मय जी, आपने तो पूरी तरह जापान का अनुभव किया और यहाँ तक कि भूकंप और सुनामी का भी। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि जापान में भूकंप या सुनामी आने पर क्या माहौल रहता है। इसमें

0: हमारी वेबसाइट आपके काम आ सके, इसके लिए धन्यवाद।
1: अगली बार जब आप आए तो हमें पहले से इतला जरूर करें, क्योंकि हम भी जापान की धरती पर अपने किसी श्रोता से मुलाकात करके धन्य होना चाहते हैं। तो आप पांचवी इच्छा भी जरूर जोड़ें, बल्कि यूं कहिए कि आपसे मिलने की इच्छा हमारी भी उतनी ही प्रबल है।
0: बिल्कुल। और देखिए, अब वक्त हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो नोट कर लीजिए फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। वायला जी, पंकज त्रिपाठी जी के साथ भेंट वार्ता काफी पसंद की गई ना?
0: हाँ, वो तो है।
1: एक श्रोता अंजुला अवस्थी विश्वास ने उनकी भेंट वार्ता पर ऑडियो संदेश भेजा है, क्यों ना वो सुन लिया जाए।
3: रंगमंच के दमदार लेकिन सरल और सादे अदाकार पंकज त्रिपाठी जी का संवाद सुनकर मन प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने सही कहा कि जीवंत अदाकारी थिएटर जिसमें किसी प्रकार की सुधार या संपादन या संशोधन या व्यवस्था करने की संभावना नहीं होती, दर्शकों के मन में कलाकार के लिए एक अविस्मृत छाप छोड़ जाता है। उनका, पंकज जी का विभिन्न शैलियों से परिचय व उसकी जानकारी काफ़ी रुचिकर लगी। उनकी सरलता व अभिनय के लाखों लोग प्रशंसक हैं। शांग्रीला जी व उनकी टीम के सभी सदस्यों को, पंकज त्रिपाठी जी को हमें सुनने देने का मौका देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद।
0: भाई वाह, क्या बात कही है। आगे भी हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए और अपनी टिप्पणी भेजते रहिए। अब अगला पत्र है प्रदीप बसाक जी का, पूर्व बर्धमान पश्चिम बंगाल से। लिखते हैं, चीन में आयोजित एक अनोखी हाफ मैराथन की खबर फेसबुक पर देखकर मन में आश्चर्य, जिज्ञासा और थोड़ी सी चिंता, तीनों भाव एक साथ उमड़ पड़े। 19 अप्रैल को बीजिंग के उपनगर में आयोजित इस प्रतियोगिता में एक इंसानी रोबोट ने इंसानों का बनाया विश्व रिकॉर्ड लगभग 7 मिनट के अंतर से तोड़ दिया। ये केवल एक खेल उपलब्धि नहीं, बल्कि तकनीक और मानव सभ्यता के रिश्ते में एक नए अध्याय का संकेत है। अब तक हम रोबोट को केवल कारखानों या प्रयोगशालाओं तक सीमित समझते थे, लेकिन उनका इस तरह खेल के मैदान में उतरकर इंसानों को पीछे छोड़ देना सचमुच कल्पना से परे लगता है। ये उपलब्धि बताती है कि चीन रोबोटिक्स के क्षेत्र में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और कितना गंभीर निवेश किया है। लेकिन इस उपलब्धि के साथ साथ मन में कुछ सवाल भी उठते हैं। क्या भविष्य में खेलों की दुनिया में भी मशीनें इंसानों का स्थान ले लेंगी? खेल तो केवल हार जीत का नाम नहीं, बल्कि उसमें मानवीय संघर्ष, भावनाएं, थकान और जज्बा भी शामिल होता है। अगर रोबोट इन सबको पीछे छोड़ देंगे तो क्या खेलों का असली सौंदर्य कहीं खो नहीं जाएगा? फिर भी इस घटना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में रोबोट न केवल उद्योगों में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अपनी जगह बना सकते हैं। यदि इन तकनीकों का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो ये मानव जीवन को और अधिक सरल और सुरक्षित बना सकते हैं। एक श्रोता के तौर पर मेरी ये भावना है कि हमें इस प्रगति को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, लेकिन साथ ही इसकी सीमाओं और प्रभावों पर भी गंभीरता से विचार करना आवश्यक है।
1: प्रदीप जी, वाकई इस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मुझे लगता है कि चीन रोबोटिक्स में इतना आगे निकल चुका है कि उस तक पहुंचने में अभी बाकी देशों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। शतरंज जैसे खेलों में कभी कभी खिलाड़ी कंप्यूटर से मुकाबला करता है, यह तो सुना था, लेकिन भागने दौड़ने में रोबोट भी उतर आएंगे, ये शायद सोचा नहीं था।
0: हाँ, और ये बात तो है। ऐसे रोबोट भविष्य में किस प्रकार प्रयोग किए जाएंगे पता नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि जीवन शैली को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे। इस प्रौद्योगिकी का सदुपयोग किया जाए और किसी गलत काम पर ना लगाया जाए, यही कामना है। हाफ मैराथन दौड़ने वाले इस रोबोट का वीडियो हमारी वेबसाइट पर है, आप जरूर देखिएगा।
1: अब ये पत्र ले रही हूँ जो आया है राजस्थान में गांव केलावा कला से रामलाल बिश्नोई जी का। लिखते हैं, 19 अप्रैल का कार्यक्रम हमेशा की तरह से थोड़ा अलग था।

0: अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी जी से मुलाकात रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगी। विशेष रूप से मेरा पत्र शामिल हुआ इसके लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिश्नोई जी, कार्यक्रम पसंद करने के लिए आभार। सुना है अभी राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, तो लू से पूरा बचाव करें और अपना ख्याल रखें।
0: मई का महीना तो पूरे भारत वर्ष में बेहद गर्म रहता है, सभी मित्र अपना ख्याल रखें।
1: जी, और अब देखिए आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सादिक आजमी जी लिखते हैं, पूर्व की भांति काफी गर्मजोशी से चेरी के देश से का इंतजार कर रहा था। परिश्रम का परिणाम पाकर मन प्रफुल्लित है, ये मिश्रण दुगनी खुशी प्रदान करता है। श्रोताओं के विचार और अहम शख्सियत से मुलाकात, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। पंकज जी के व्यक्तित्व की सभी श्रोता मित्रों ने खुले मन से प्रशंसा की। आज की बातचीत से कुछ प्रमुख पहलुओं के परतें उभर कर सामने आईं। अभिनय जगत में कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी कैसे बनती है और निपुणता की प्राप्ति किस प्रकार होती है, पंकज जी ने सहजता से समझाया। मुझे लगता है कि इस भेंटवार्ता से अभिनय जगत में मुकाम हासिल करने वाले सभी युवा वर्गों को प्रेरणा मिली होगी। हमें भी उनके दैनिक जीवन एवं भविष्य की योजनाओं को जानने का अवसर मिला। रामकुमार नीरज जी की प्रतिक्रिया सारगर्भित होती है, ऐसे श्रोताओं से ही आपका मंच रौनक है। भाई चिन्मय महतो जी की उपलब्धि पर अनेकानेक बधाइयां एवं शुभकामनाएं।
0: सादिक जी, आपने कार्यक्रम को पसंद किया इसके लिए आभार। पंकज जी के साथ बातचीत में काफी बातें निकल कर आईं, न केवल फिल्म जगत के बारे में बल्कि ऐसा फलसफा भी जो आम जीवन में हर कोई अपना सकता है।
1: सही कहा। अच्छा, फेसबुक पर राजीव धीमन जी ने आओ सीखे जापानी भाषा के लिए एक सुझाव दिया है कि वेबसाइट से ज्यादा यूट्यूब आसान है, आप कोई यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाते, यूट्यूब चैनल पर वीडियो सीरीज डालें तो बहुत लोग सीख पाएंगे।
0: विचार तो अच्छा है, देखते हैं क्या होता है। आइए अब कुछ मनोरंजन हो जाए गीत संगीत के द्वारा, तो सुनते हैं गीत हारे तारा ई ने, यानी अच्छा हो अगर मौसम साफ हो, धूप खिली हो। गाया है ड्रीम्स कम ट्रू ग्रुप ने।

0: दोस्तों अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दे वायला कवानों को
1: और रंजना सिंह को
0: सायोनारा, नमस्कार।

0: कुछ उनकी सुने कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें।
1: जी सामिन, ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और मैं यानी खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामिन को आदाब।
1: वसीमा जी, आज हमारे साथ एक नए साथी शामिल हो रहे हैं।
2: अरे तशरीफ लाए हैं खलील शेराजी, लेकिन किसी तारुफ के मुहताज नहीं ये। खलील साहब नए नहीं हैं, यूं कहिए दोबारा तशरीफ लाए हैं।
1: तो जनाब खुशामदीद दीवान खाना में भी और जापान में भी।
0: बहुत शुक्रिया, आप सबसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो जो सामीन पहली बार मुझे सुन रहे हैं उनको बताता चलूं कि मैं हूं खलील शिराजी। 2022 से दीवान खाना टीम के साथ शामिल रहा, बाद ऐसा पाकिस्तान चला गया था। वहां से दीवान खाना के जरिए कभी कभार दोस्तों से मुखातिब होने का मौका मिलता रहा है।
2: अरे ये भी बताइए ना कि खबरों में तवातर से सामीन आपको सुनते रहे, और ये नए साहब नहीं हैं, ये हैं काफ़ी।

0: मेरे ख्याल में पंजाब में ज़्यादा अगर हम वायलेंस का रेशियो देखें तो रिपोर्ट ज़्यादातर ये होता है बड़े शहरों में, क्योंकि वहाँ पे लोगों को नॉलेज ज़्यादा होता है, लोगों को अवेयरनेस टॉक्स ज़्यादा हैं वहाँ पे ज़्यादा। बिग सिटीज़ में अवेयरनेस ज़्यादा होने की वजह से रिपोर्टिंग ज़्यादा है, लेकिन जो इसका शिकार ख़वातीन है वो बैकवर्ड एरियाज़ में ज़्यादा है, रिमोट एरियाज़ में ज़्यादा है, क्योंकि हमारी सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है हमारे ऊपर कि हमें ये बताया जाता है कि अपना घरेलू मैटर घर घर तक ही रखना, इसको आगे आपने लेके नहीं जाना। लिहाजा ये बैकवर्ड और रिमोट एरियाज़ में है ज़रूर, लेकिन ये रिपोर्टिंग इसकी कम है, रिपोर्टिंग बिग सिटीज़ में ज़्यादा है।
1: बहुत अफसोस की बात है। वैसे शाद अजीम आबादी ने कहा था, खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है।
2: खदीजा, तशद्दुद जो चुपचाप बर्दाश्त करते हैं वो शायद समझते हैं कि घर की बात घर तक रहे तो अच्छा है।
1: यानी एक तरफ तशद्दुद करने की आदत और दूसरी जानिब सहने की आदत।
3: सिर्फ आदत ही नहीं, कुछ नफसियाती वजूहात भी हैं।
4: अच्छा मैडम, आप चूंकि साइकोलॉजिस्ट हैं तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो सिंफ की बुनियाद पर तशद्दुद जो लोग करते हैं जब ये होता है, इसके पीछे नफसियाती अवामिल क्या हैं? कौन सी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान ये करने पर मजबूर होता है? मैं सहने वाले की बात नहीं कर रहा, जो कर रहा होता है उसकी।
0: अच्छा, इसमें जो हमारे शेल्टर होम में आते हैं उस पर बेसिकली मेरी जो एमफिल की रिसर्च है वो भी शेल्टर वुमेन पे है, यानी कि जो ख़वातीन हमारे पास शेल्टर लेती हैं उन पे होती हैं। तो बेसिकली इसके कुछ डेमोग्राफिक्स हैं जो मैंने रिसर्च भी किए हैं, बकायदा मेरी एमफिल की रिसर्च इस चीज़ पे थी। वो मर्द हज़रात जो ख़वातीन से दूर रहते हैं, किसी भी जॉब के सिलसिले में रहते हैं, किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल उनका ताल्लुक किसी ऐसे डिपार्टमेंट से है कि वो उनको जॉब की वजह से कारोबार की वजह से साथ नहीं रहते, तो इन द मीन वाइल उनकी जो साइकोलॉजिकली उनकी डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि वो फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते, लिहाजा वो एक दूर रहने की वजह से उनकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस अगर हम करें तो वो फ़र्क होता है एज़ कम्पेयर टू दोज मैन जो कि अपनी बीवी के साथ रह रहे हैं। तो जब कभी वो अपने काम से वापस आते हैं तो वो उनकी जो साइकी होती है वो उन्हें असर करती है और वो वायलेंस की तरफ जाते हैं। फिर उसमें एक और रीज़न ड्रग एडिक्शन की आती है, ड्रग जो जो हस्बैंड ड्रग लेते हैं वो भी अब्यूज़र्स होते हैं। फिर उसके अलावा कुछ चाइल्डहुड इन्फ्लुएंसेस होते हैं, मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी ने बचपन में फेस किया है अब्यूज़ को तो वो बड़े होके भी अब्यूज़र ही बनता है, तो ये पूरा एक साइकिल होता है। तो इसकी मे बी एक वो हम पढ़ते हैं साइकोडाइनमिक अप्रोच ना, उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है कि उस मर्द को बचपन में उनके माँ बाप की तरफ से वायलेंस का शिकार हुआ हो या बुलिंग का शिकार हुआ हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके माइंड में बैठ गई हो और इस वजह से वो अब अपनी बीवी पे भी वायलेंस करता हो। और तीसरा एक सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव भी आता है जो कि हमारा पावर एनालिसिस है कि हमारे यहाँ एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है एज अ होल, तो मेल की अपब्रिंगिंग ही इस तरह से की जाती है कि उसको फील होता है कि ही इज़ डोमिनेटिंग, ही शुड डोमिनेट हर वाइफ, उसने अपनी वाइफ को डोमिनेट करना है, लिहाजा एक सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव बन चुका है ये पेट्रियार्कल सोसाइटी का।
2: दुरुस्त कह रही हैं। वैसे मेरे ख्याल में इन सब की जड़ें पितरशाही माशरे में काफ़ी गहराई तक व्यवस्थित हैं।
1: और अब हमें जापानी खातून के तासरा से भी आगाह कीजिए।
3: जी ज़रूर, ये खातून हैं उसामी मरी साहिबा, जो कि जायका की स्पेशलिस्ट के तौर पर पाकिस्तान में साल 2021 से 2023 तक काम करती रही हैं। वो ख्वातीन के तहफ़ के मराकज और पनागाहें बतौर एडवाइज़र देखती रही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सिनफी तशद्दुद की शिकार ख्वातीन से बात करके वो हैरान रह गईं।
2: अच्छा खलील साहब, ये वही उसामी साहिबा हैं ना जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के मुतासरीन के लिए मंसूबे की मशीर थी?
3: जी बिल्कुल वही हैं, वो अभी भी जायका में पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं।
5: हरी सुनो तो कि नहीं सुगोकु ओदोरो इतानो का अनो वकाई जोसे नो हिगाईशा गा केक्को ओकुते।
1: मुझे हैरत थी कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा मुतासरी नौजवान ख़वातीन थी, उनमें से कई अभी गैर शादीशुदा भी थी, लेकिन उन पर ज़बरदस्ती की शादी या वालिदैन की मर्ज़ी की शादी मुसल्लत की जा रही थी, उन्हें वालिदैन के मुंतखब करदा शख्स से शादी करनी पड़ रही थी, उससे नहीं जिसे वो चाहती थी। नापसंदीदगी की वजह से उनमें से कई घरों से भाग गई। दूसरी तरफ ऐसी ख्वातीन भी थी जो पहले से शादीशुदा होने के बावजूद फरार हुई। ऐसे मामलात में मैंने सुना कि भागने से पहले उन्हें फैसला करना पड़ता है कि आइंदा किससे शादी करेंगी। इससे मुझे इदराक हुआ कि पाकिस्तान में ख्वातीन के लिए शादी कितनी अहम है और शादी के अलावा अमली तौर पर तकरीबन कोई मुतबादिल बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए बड़ी चौंका देने वाली हकीकत थी। कई केसेस ऐसे थे जहाँ वालिदैन ने कहा तुम्हें इसी शख्स से शादी करनी होगी, लेकिन खातून चूंकि किसी और को पसंद करती थी اور والدین کے منتخب کردہ

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानों का कोनिचिवा नमस्कार।
1: आवाज की दुनिया के सभी साथियों को रंजना सिंह का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिचिवा। लेकर हाजिर है आपके पत्रों के जवाब, तो कहीं न जाए, बने रहे हमारे साथ।
0: रंजना जी, आजकल आपने गौर किया होगा कि हर जगह हरियाली छाई हुई है, फूलों की बहार है।
1: हाँ, खासकर गुलाब ट्यूलिप के फूल काफी देखने को मिल रहे हैं, और वो भी तरह तरह के रंगों में।
0: हाँ,
1: मैं भी सोच रही हूँ कि अपने घर की बालकनी में लगा कर देखूँ, कुछ नया करना तो बनता है ना।
0: हाँ भाई, मौसम इतना खुशगवार है कि मन प्रसन्न है, ऐसे में नई नई चीजों में हाथ आजमाना अच्छा रहेगा। मैं भी सोच रही हूँ कि अपने बाल कटवाऊं, अपना कुछ स्टाइल बदलूं।
1: अरे ये भी अच्छा विचार है। वैसे बाल कटवाते समय जमीन पर गिरे बालों को देखकर कभी कभी दुख होता है कि कितने प्यार से बड़े किए थे और अब कूड़े में जा रहे हैं।
0: वो तो है, और भारत में होते तो देखिए बालों से कमाई भी हो सकती थी।
1: अरे हाँ, इससे जुड़ा एक वीडियो मैंने हमारी वेबसाइट पर देखा कि कैसे लोग अपने बाल बेचकर कमाई कर रहे हैं। विग आदि के लिए भारत से बड़ी मात्रा में कैश निर्यात होते हैं, और इन काले बालों को ब्लैक डायमंड तक कहा जा रहा है।
0: बताइए, ये भी एक कारोबार है। लेकिन देखिए, मेरे बाल तो इतने हैं भी नहीं कि इन्हें बेच सकूं, उल्टा मुझे खुद बालों की जरूरत है।
1: अगर श्रोताओं को इस विषय में रुचि हो तो जरूर देखें हमारी यह वीडियो क्लिप। बहरहाल समय निकलता जा रहा है, तो लेते हैं श्रोताओं के पत्र।
0: जी हाँ, और सबसे पहले है सुरेश अग्रवाल जी का पत्र। लिखते हैं, दिनांक 3 मई के चरी के देश से के अंतर्गत अभिनेता पंकज त्रिपाठी से की गई भेंटवार्ता का तीसरा और अंतिम भाग भी सुनने का अवसर मिला। पूरी बातचीत का सार यही रहा कि पंकज जी एक गहरे यथार्थ से जुड़े संवेदनशील और सरल व्यक्तित्व के धनी इंसान हैं। सिनेमा और OTT प्लेटफॉर्म के संबंध में उनके संतुलित और विचारोत्तेजक दृष्टिकोण विशेष रूप से प्रभावित करने वाले रहे। ऐसा भी प्रतीत हुआ कि व्यक्तिगत स्तर पर OTT उन्हें उतना आकर्षित नहीं करता जितना पारंपरिक सिनेमा। समग्र रूप से ये साक्षात्कार अत्यंत रोचक, सारगर्भित और सुनने योग्य रहा। और लिखते हैं कि आज के अंक में फेसबुक से श्रोता मित्र उमेश शर्मा की टिप्पणी भी सुनवाई गई। उमेश जी मेरे समकालीन श्रोताओं में से एक रहे हैं, और मुझे भली भांति स्मरण है कि एक समय कैलाश नगर नारनौल हरियाणा के उमेश शर्मा रेडियो जगत में विशेष पहचान बनाए हुए थे। उनका उल्लेख सुनकर ऐसा लगा मानो कोई खोई हुई अमूल्य धरोहर पुनः प्राप्त हो गई हो।
1: सुरेश जी, पंकज त्रिपाठी जी के साथ भेंट वार्ता का तीसरा अंक भी आपने सुना, इसके लिए आभार। पंकज जी की बातें सच में दिलचस्प रही, और हमें खुशी है कि उनके साथ विशेष बातचीत आप सब तक पहुंच सके। उमेश शर्मा जी वही हरियाणा वाले हैं या फिर कोई और, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उमेश जी जरूर अपने बारे में बताएंगे।
0: और बेहतर होगा अगर वे इस कार्यक्रम के लिए ईमेल से अपना परिचय लिखकर हमें भेजें। तो उमेश जी, इंतजार है आपके पत्र का।
1: जी, अब ये अगला पत्र है हरि बालाकृष्ण जी का। लिखते हैं, पिछले कुछ साल से मैं भारतीय समय अनुसार रात 9 से 9:20 तक आपके हिंदी प्रसारण का दैनिक श्रोता हूँ। मैं विशेष रूप से शनिवार का इंतजार करता हूँ जब साहित्य सरिता का प्रसारण होता है। अब तक मैंने सभी कहानियाँ इतनी बार सुन ली है कि याद हो गई हैं। मेरी सबसे पसंदीदा कहानी है मकड़ी का तार और पत्थरों का कोया।
0: हरी जी, हमारा प्रसारण सुनने के लिए धन्यवाद। लगता है कि आपको साहित्य में रुचि है। आगे भी सुनते रहें और हमें लिखते रहें। और भी तरह तरह की सामग्री हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, तो उनका भी आप आनंद लें।
1: जी हाँ, और हमें अपनी राय से अवगत भी जरूर कराएं।
0: बिल्कुल। और अब देखिए, अगला पत्र है रामकुमार नीरज जी का, आरा बिहार से। लिखते हैं, हिंदी सेवा की वेबसाइट पर ये रिपोर्ट कि शोधकर्ताओं ने पूर्वोत्तर जापान के तट पर आई सुनामी की गति का किया आकलन, केवल एक प्राकृतिक घटना की सूचना नहीं देती, बल्कि हमें प्रकृति की अपार शक्ति और मानव जीवन की नाजुकता का गहरा एहसास कराती है। पूर्वोत्तर जापान में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद मात्र 20 मिनट में सुनामी की लहरों का तट तक पहुंचना, ये दर्शाता है कि आपदाएं कितनी तेजी से इंसानी जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ ही पलों में सामान्य चल रहा जीवन भय, अनिश्चितता और संघर्ष में बदल सकता है। इस समाचार की सबसे बड़ी गंभीरता यही है कि जब धरती कांपती है और समुद्र उठ खड़ा होता है, तब इंसान की सारी तकनीक, संपत्ति और योजनाएं बहुत छोटी दिखाई देने लगती हैं। प्राकृतिक आपदाएं मानवता को भीतर तक चोट पहुंचाती हैं। आपदा के बाद लोग लंबे समय तक डर, मानसिक तनाव और असुरक्षा की भावना के साथ जीते हैं।
1: ये बात तो है, आपदाएं न केवल आर्थिक नुकसान करती हैं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी चोट पहुंचाती हैं।
0: जी, और रामकुमार जी आगे लिखते हैं कि इस रिपोर्ट में शोध दल द्वारा किया गया सिमुलेशन ये भी बताता है कि विज्ञान और शोध मानवता की रक्षा के लिए कितने जरूरी हैं। यदि समय रहते चेतावनी मिले, लोग सुरक्षित स्थानों पर तुरंत चले जाएं और प्रशासन सतर्क रहे, तो अनेक जीवन बचाए जा सकते हैं। ये रिपोर्ट हमें सिखाती है कि प्रकृति के सामने घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता, तैयारी और एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता ही सबसे बड़ी ताकत है। अंततः ऐसी आपदाएं हमें याद दिलाती हैं कि इंसानियत की असली पहचान संकट के समय सामने आती है, जब लोग एक दूसरे का हाथ थामते हैं, राहत पहुंचाते हैं और टूटे हुए जीवन को फिर से खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तभी मानवता सच में जीवित रहती है।
1: बहुत ही सटीक आकलन किया है राम कुमार जी ने। प्रकृति की ताकत के आगे मनुष्य बेबस होता है, लेकिन अगर तैयारी और एकजुटता के साथ मुकाबला किया जाए तो किसी तरह से उस पर पार पाया जा सकता है। जीता तो नहीं जा सकता, लेकिन जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सकता है।
0: हाँ, और जापान से यही सबसे बड़ी सीख मिलती है और इसका प्रसार पूरी दुनिया में होना चाहिए।
1: अब देखिए, भुवनेश्वर ओडिशा से चिन्मय होता जी का पत्र है। लिखते हैं, मैं आज सुबह ही होकाइदो की 14 दिन की यात्रा से लौटा हूँ।
0: अच्छा,
1: यह जापान की सुंदर भूमि और अद्भुत लोगों की मेरी तीसरी यात्रा थी। 2012 में मैंने होनशु द्वीप का भ्रमण किया था। 2017 में मैं ओकिनावा और होनशु के कुछ स्थलों पर गया था। मेरी यह नवीनतम यात्रा पूर्णतः होकाइदो के लिए आरक्षित थी और मैं पहाड़ों, प्राकृतिक दृश्यों और शहरी परिदृश्यों से मंत्रमुग्ध हो गया। मेरे पास जापान में चार चीजें देखने की सूची थी, माउंट फूजी को देखना, चेरी ब्लॉसम का आनंद लेना, और मैंने इन दोनों को पूरा कर लिया है। मेरे दो और सपने हैं, सुमो का खेल देखना और काबुकी थिएटर का प्रदर्शन देखना।
0: अच्छा,
1: मैं 1980 के दशक से NHK का एक उत्साही श्रोता रहा हूँ और मैंने आपके स्टेशन को कई रेडियो श्रोता रिपोर्ट भेजे हैं और बदले में सुंदर तस्वीर वाले पोस्ट कार्ड प्राप्त किए हैं। मेरी यात्रा ने मुझे एक बार फिर रेडियो जापान की ओर लौटने और आपको लिखने के लिए प्रेरित किया है।
0: अरे वाह चिन्मय जी, कितनी बार आप जापान आ चुके हैं, और मुझे लगता है कि रंजना जी हम लोगों से भी बहुत ज्यादा घूम और देख चुके हैं।
1: हाँ, सही कहा। आगे लिखते हैं, मैंने पंकज त्रिपाठी के साथ साक्षात्कार का बहुत आनंद लिया और उन्होंने काबुकी थिएटर की मेरी सुप्त इच्छा को और तीव्र कर दिया। वास्तव में वह एक महान अभिनेता है जो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए लाखों लोगों के प्रिय है। जापान यात्रा के दौरान जब भूकंप आया और जिस क्षेत्र में मैं था उसे सुनामी ने खतरे में डाल दिया, तो मैं नवीनतम रिपोर्ट एकत्र करने के लिए आपके प्रसारण की ओर लौटा। NHK के साथ मैंने 56 वर्ष की उम्र में वैसा ही आश्वस्त महसूस किया जैसा मैंने एक किशोर के रूप में महसूस किया था। लंबे समय से चले आ रहे बंधन को जीवित रखने के लिए रेडियो जापान का धन्यवाद। क्या मुझे जापान के बारे में अपनी पांचवी इच्छा भी जोड़नी चाहिए, एक बार आपके स्टूडियो में आना और आप महान लोगों से मिलना?
0: अरे चिन्मय जी, आपने तो पूरी तरह जापान का अनुभव किया और यहाँ तक कि भूकंप और सुनामी का भी। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि जापान में भूकंप या सुनामी आने पर क्या माहौल रहता है। इसमें हमारी वेबसाइट आपके काम आ सकी, इसके लिए धन्यवाद।
1: अगली बार जब आप आए तो हमें पहले से इतला जरूर करें, क्योंकि हम भी जापान की धरती पर अपने किसी श्रोता से मुलाकात करके धन्य होना चाहते हैं। तो आप पांचवी इच्छा भी जरूर जोड़ें। बल्कि यूं कहिए कि आपसे मिलने की इच्छा हमारी भी उतनी ही प्रबल है।
0: बिल्कुल। और देखिए, अब वक्त हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो नोट कर लीजिए फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। वायला जी, पंकज त्रिपाठी जी के साथ भेंट वार्ता काफी पसंद की गई ना?
0: हाँ, वो तो है।
1: एक श्रोता अंजुला अवस्थी विश्वास ने उनकी भेंट वार्ता पर ऑडियो संदेश भेजा है, क्यों ना वो सुन लिया जाए।
3: रंगमंच के दमदार लेकिन सरल और सादे अदाकार पंकज त्रिपाठी जी का संवाद सुनकर मन प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने सही कहा कि जीवंत अदाकारी थिएटर जिसमें किसी प्रकार की सुधार या संपादन या संशोधन या व्यवस्था करने की संभावना नहीं होती, दर्शकों के मन में कलाकार के लिए एक अविस्मृत छाप छोड़ जाता है। उनका, पंकज जी का विभिन्न शैलियों से परिचय व उसकी जानकारी काफ़ी रुचिकर लगी। उनकी सरलता व अभिनय के लाखों लोग प्रशंसक हैं। शांग्रीला जी व उनकी टीम के सभी सदस्यों को, पंकज त्रिपाठी जी को हमें सुनने देने का मौका देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद।
0: भाई वाह, क्या बात कही है। आगे भी हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए और अपनी टिप्पणी भेजते रहिए। अब अगला पत्र है प्रदीप बसाक जी का, पूर्व बर्धमान पश्चिम बंगाल से। लिखते हैं, चीन में आयोजित एक अनोखी हाफ मैराथन की खबर फेसबुक पर देखकर मन में आश्चर्य, जिज्ञासा और थोड़ी सी चिंता, तीनों भाव एक साथ उमड़ पड़े। 19 अप्रैल को बीजिंग के उपनगर में आयोजित

0: इस प्रतियोगिता में एक इंसानी रोबोट ने इंसानों का बनाया विश्व रिकॉर्ड लगभग 7 मिनट के अंतर से तोड़ दिया। ये केवल एक खेल उपलब्धि नहीं बल्कि तकनीक और मानव सभ्यता के रिश्ते में एक नए अध्याय का संकेत है। अब तक हम रोबोट को केवल कारखानों या प्रयोगशालाओं तक सीमित समझते थे, लेकिन उनका इस तरह खेल के मैदान में उतरकर इंसानों को पीछे छोड़ देना सचमुच कल्पना से परे लगता है। ये उपलब्धि बताती है कि चीन रोबोटिक्स के क्षेत्र में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और कितना गंभीर निवेश किया है। लेकिन इस उपलब्धि के साथ साथ मन में कुछ सवाल भी उठते हैं। क्या भविष्य में खेलों की दुनिया में भी मशीनें इंसानों का स्थान ले लेंगी? खेल तो केवल हार जीत का नाम नहीं बल्कि उसमें मानवीय संघर्ष, भावनाएं, थकान और जज्बा भी शामिल होता है। अगर रोबोट इन सबको पीछे छोड़ देंगे तो क्या खेलों का असली सौंदर्य कहीं खो नहीं जाएगा? फिर भी इस घटना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में रोबोट न केवल उद्योगों में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अपनी जगह बना सकते हैं। यदि इन तकनीकों का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो ये मानव जीवन को और अधिक सरल और सुरक्षित बना सकते हैं। एक श्रोता के तौर पर मेरी ये भावना है कि हमें इस प्रगति को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, लेकिन साथ ही इसकी सीमाओं और प्रभावों पर भी गंभीरता से विचार करना आवश्यक है।
1: प्रदीप जी, वाकई इस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मुझे लगता है कि चीन रोबोटिक्स में इतना आगे निकल चुका है कि उस तक पहुंचने में अभी बाकी देशों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। शतरंज जैसे खेलों में कभी कभी खिलाड़ी कंप्यूटर से मुकाबला करता है, यह तो सुना था, लेकिन भागने दौड़ने में रोबोट भी उतर आएंगे, ये शायद सोचा नहीं था।
0: हाँ, और ये बात तो है। ऐसे रोबोट भविष्य में किस प्रकार प्रयोग किए जाएंगे पता नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि जीवन शैली को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे। इस प्रौद्योगिकी का सदुपयोग किया जाए और किसी गलत काम पर ना लगाया जाए, यही कामना है। हाफ मैराथन दौड़ने वाले इस रोबोट का वीडियो हमारी वेबसाइट पर है, आप जरूर देखिएगा।
1: अब ये पत्र ले रही हूँ जो आया है राजस्थान में गांव केलावा कला से रामलाल बिश्नोई जी का। लिखते हैं, 19 अप्रैल का कार्यक्रम हमेशा की तरह से थोड़ा अलग था। इसमें अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी जी से मुलाकात रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगी। विशेष रूप से मेरा पत्र शामिल हुआ इसके लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिश्नोई जी, कार्यक्रम पसंद करने के लिए आभार। सुना है अभी राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, तो लू से पूरा बचाव करें और अपना ख्याल रखें।
1: मई का महीना तो पूरे भारत वर्ष में बेहद गर्म रहता है, सभी मित्र अपना ख्याल रखें।
0: जी, और अब देखिए आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सादिक आजमी जी लिखते हैं, पूर्व की भांति काफी गर्मजोशी से चेरी के देश से का इंतजार कर रहा था। परिश्रम का परिणाम पाकर मन प्रफुल्लित है, ये मिश्रण दुगनी खुशी प्रदान करता है। श्रोताओं के विचार और अहम शख्सियत से मुलाकात, यानी आम के आम गुटलियों के दाम। पंकज जी के व्यक्तित्व की सभी श्रोता मित्रों ने खुले मन से प्रशंसा की। आज की बातचीत से कुछ प्रमुख पहलुओं के परतें उभर कर सामने आईं। अभिनय जगत में कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी कैसे बनती है और निपुणता की प्राप्ति किस प्रकार होती है, पंकज जी ने सहजता से समझाया। मुझे लगता है कि इस भेंटवार्ता से अभिनय जगत में मुकाम हासिल करने वाले सभी युवा वर्गों को प्रेरणा मिली होगी। हमें भी उनके दैनिक जीवन एवं भविष्य की योजनाओं को जानने का अवसर मिला। रामकुमार नीरज जी की प्रतिक्रिया सारगर्भित होती है, ऐसे श्रोताओं से ही आपका मंच रौनक है। भाई चिन्मय महतो जी की उपलब्धि पर अनेकानेक बधाइयां एवं शुभकामनाएं।
1: सादिक जी, आपने कार्यक्रम को पसंद किया इसके लिए आभार। पंकज जी के साथ बातचीत में काफी बातें निकल कर आईं, न केवल फिल्म जगत के बारे में बल्कि ऐसा फलसफा भी जो आम जीवन में हर कोई अपना सकता है।
0: सही कहा। अच्छा, फेसबुक पर राजीव धीमन जी ने आओ सीखे जापानी भाषा के लिए एक सुझाव दिया है कि वेबसाइट से ज्यादा यूट्यूब आसान है, आप कोई यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाते? यूट्यूब चैनल पर वीडियो सीरीज डालें तो बहुत लोग सीख पाएंगे।
1: विचार तो अच्छा है, देखते हैं क्या होता है। आइए अब कुछ मनोरंजन हो जाए गीत संगीत के द्वारा, तो सुनते हैं गीत हारे तारा ई ने, यानी अच्छा हो अगर मौसम साफ हो, धूप खिली हो। गाया है ड्रीम्स कम ट्रू ग्रुप ने।

0: दोस्तों अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दे वायला कवानों को
1: और रंजना सिंह को
0: सायोनारा, नमस्कार।

0: कुछ उनकी सुने कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें।
1: जी सामिन, ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और मैं यानी खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामिन को आदाब।
1: वसीमा जी, आज हमारे साथ एक नए साथी शामिल हो रहे हैं।
2: अरे तशरीफ लाए हैं खलील शेराजी, लेकिन किसी तारुफ के मोहताज नहीं ये। खलील साहब नए नहीं हैं, यूं कहिए दोबारा तशरीफ लाए हैं।
1: तो जनाब खुशामदीद दीवान खाना में भी और जापान में भी।
0: बहुत शुक्रिया, आप सबसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो जो सामीन पहली बार मुझे सुन रहे हैं उनको बताता चलूं कि मैं हूं खलील शिराजी। 2022 से दीवान खाना टीम के साथ शामिल रहा, बाद ऐसा पाकिस्तान चला गया था। वहां से दीवान खाना के जरिए कभी कभार दोस्तों से मुखातिब होने का मौका मिलता रहा है।
2: अरे ये भी बताइए ना कि खबरों में तवातर से सामीन आपको सुनते रहे, और ये नए साहब नहीं हैं, ये हैं काफ़ी पुराने।
0: जी बिल्कुल, काफ़ी, मैं काफ़ी मुत्तफिक हूँ।
1: अरे वाह, अच्छा आप काफ़ी इस तरह कह रहे हैं, मुझे लगता है कि जो है शिराजी साहब कहीं मोहनजोदड़ो से तो खुदाई में नहीं निकले। अच्छा ये बताएं शिराजी साहब कि कैसा लगा दूसरी मरतबा जापान आकर आपको?
0: जी बहुत ज़बरदस्त, आप खुद ही देखें, बाहर का मौसम हो, चेरी के फूल हों और टोक्यो जैसा शहर, तो हर दिन खुशी का एक त्यौहार बन जाता है। इसीलिए तो पूरी दुनिया से टूरिस्ट उमड़ आते हैं जापान में।
1: जी।
2: और आप कहाँ कहाँ गए जापान में इस महीने में?
0: मुझे किसी ने बताया कि सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद से निपटने वाले कुछ लोग पाकिस्तान से जापान आए हैं, तो मैंने सोचा कि उनसे बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, तो मैं सीधा उनके पास चला गया।
1: तो फिर क्या सीखा, हमें भी सुनाइए जल्दी से।
0: अब इतनी जल्दी भी नहीं सुना सकता।
2: चलें चलें, आराम से चलिए, पर चलिए ज़रूर।
0: जी जी हाँ, तो आखिर अप्रैल में महकमे समाजी बहबूद पंजाब के 11 अफसरान जापान आए थे। ये लोग सिंफ की बुनियाद पर तशद्दुद के मसले से निमटते हैं।
1: किसी मुतालिती दौरे पर आए होंगे वो?
0: ये जापान बैन अलावामी ताउन एजेंसी यानी जायका के ज़रिए अहतमाम एक ट्रेनिंग कोर्स में शिरकत के लिए आए थे।
2: अच्छा, आपने उनसे मुलाकात की, तो कैसी रही?
0: मुलाकात नहीं, मुलाकातें। मैंने उनसे वो सब कुछ पूछा जो मेरे जहन में था, और उनके जवाबात को रिकॉर्ड भी कर लाया ताकि सामीन भी इस गुफ्तगु का मजा लें।
1: अच्छा ये बताएं कि सिन्फी तशद्दुद की रोकथाम कैसे की जा रही है?
0: हुकूमत पंजाब 2021 से जापान के साथ मिलकर खवातीन को सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद से बचाने के लिए कोशिशें हैं।
2: अच्छा, तो फिर आपकी जापानी शुरका से भी मुलाकात हुई होगी?
0: जी बिल्कुल, पाकिस्तानी अफसरान के साथ साथ मुझे एक जापानी खातून से भी गुफ्तगू का मौका मिला जो पाकिस्तान में उनके साथ 2 साल काम कर चुकी हैं।
1: अच्छा शिराजी साहब, आगे बढ़ने से पहले मुझे आप ये बताएं कि सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद या सिन्फी तशद्दुद ये है क्या?
0: यही मेरा भी पहला सवाल था जो मैंने मोहम्मद सुलेमान साहब के सामने रखा। वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब में प्लानिंग एंड इवेल्युएशन के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने बताया।
3: तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका फ्राहम किया। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है, मैं डायरेक्टर प्लानिंग एंड वेल्यूशन हूँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान में।
0: सर, ये ट्रेनिंग चूंकि सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद के हवाले से है, तो हमें ये बताइए कि सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद से क्या मुराद है, आम फहम अंदाज में, कि लोग समझ पाएँ?
3: अगर इस बात को आप आम फहम अंदाज में, तो जैसे कि लफ्ज़ सिन्फ से जाहिर है, सिन्फ से मुराद है किसी की बुनियाद, किसी के ऊपर तशद्दुद करना कि क्या वो एक पर्टिकुलर किसी एक सिन्फ से बिलोंग करता है। मसलन कोई खातून है, कोई बच्चे होने की बुनियाद पर या किसी ट्रांसजेंडर होने की बुनियाद पर, तो जब कोई इस किस्म के तशद्दुद के वाकयात हो रहे हैं उसकी क्या सिर्फ उस सिन्फ की बुनियाद पे, तो उसको हम सिन्फी तशद्दुद कहते हैं।
2: अरे भी इस्तेहसाल की इजाज़त तो वाकई बिल्कुल ना होनी चाहिए, पता नहीं बेचारी कितनी खवातीन होंगी जो इस अजियत से गुजर रही हैं।
1: अच्छा पाकिस्तान में कहाँ कहाँ इसकी शरह ज़्यादा है, कुछ पता लगाया आपने?
0: वो चूँकि पंजाब की सतह पर काम कर रहे हैं, इसलिए सुलेमान साहब ने सिर्फ सूबे पंजाब के हवाले से बताया।
4: ठीक है, अच्छा पंजाब में सर क्या सूरत हाल है, कहाँ पे लोग इसका शिकार हैं, खासकर ख्वातीन, और कौन कौन से किस किस्म के तशद्दुद का वो शिकार हैं?
3: बेसिकली जो पंजाब में देखें, पंजाब पाकिस्तान में या पंजाब में कोई अथेंटिक अगर आप कहें ना डेटा, तो इस सिलसिले में कोई अवेलेबल उस तरीके से नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको देखा जाए तो पिछले साल 2025 में अंदाजन तकरीबन कुछ 30,000 के करीब ख्वातीन ने ये रिपोर्ट हुए हैं केसेस। अब इससे मुराद मेरी ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ 30,000 ख्वातीन के ऊपर لیکن یہ تقریباً 30,000 کے قریب مختلف لیول پہ، جس میں پولیس بھی ہو سکتا ہے، جس میں پنجاب میں سیف سٹی اتھارٹی بھی ہے، جس میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ادارے بھی ہیں، جس میں پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے ادارے بھی ہیں، تو 30,000 سے زائد کیسز وہاں پہ رپورٹ ہوئے ہیں. اور ان میں اگر جہاں تک اس کی بات کی جائے کہ کون سے تشدد ہیں، بیسکلی جو چیزیں ابھی ڈیٹا ہمارے پاس کچھ اویلیبل ہے اس میں، تو لاہور کیونکہ سب سے بڑا شہر ہے تو یہاں پہ سب سے زیادہ رپورٹنگ ہے، اور اس میں جو سیکس کی بنیاد پہ جو تشدد کے واقعات بھی شامل ہیں. لیکن جو ساؤتھ پنجاب ہے اس میں زیادہ ڈومیسٹک وائلنس، کیونکہ وہاں پہ ایک جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹریارکل سوسائٹی وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے، تو وہاں پہ مرد اپنی مردانگی کو اس میں شو کرنے کے لیے تو زیادہ تر گھریلو تشدد کے جو کیسز ہیں وہاں پہ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جو اپنا سب سے پہلا جو سینٹر وومن پروٹیکشن سینٹر بنایا تھا 2018 میں، وہ ملتان ساؤتھ پنجاب پاکستان میں ہی بنایا ہے.
1: بے حد حیران کن، صرف پنجاب میں اور صرف گزشتہ ایک سال میں 30,000 یقین کرنا مشکل ہے.
0: حقیقی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. سلیمان صاحب نے بتایا کہ بہت سے کیسز تو نہ رپورٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی گنتی میں آتے ہیں.
2: ارے وہ کیوں بھائی؟
0: اس کی نفسیاتی وجوہات ہیں وسیمہ صاحبہ، جن کے بارے میں میں نے ماہر نفسیات سے پوچھا جو خوش قسمتی سے اس ٹریننگ کورس میں شریک تھیں.
5: میرا نام آمنہ غنی ہے اور میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کر رہی ہوں شیلٹر ہوم یعنی کہ دارالامان حافظ آباد میں، جو کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پنجاب کے انڈر آتا ہے.
4: پنجاب کی میڈم صورتحال کیا ہے؟ کہاں پہ لوگ زیادہ تر اس کا شکار ہوتی ہیں اور وجوہات اس کی کیا ہیں آپ کے خیال میں اسپیسیفک ایریاز کا؟
5: اس میں میرے خیال میں پنجاب میں زیادہ اگر ہم وائلنس کا ریشو دیکھیں تو رپورٹ زیادہ تر یہ ہوتا ہے بڑے شہروں میں، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو نالج زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کو اویئرنیس ٹاکس زیادہ ہیں وہاں پہ زیادہ. بگ سٹیز میں اویئرنیس زیادہ ہونے کی وجہ سے رپورٹنگ زیادہ ہے، لیکن جو اس کا شکار خواتین ہیں وہ بیکورڈ ایریاز میں زیادہ ہے، ریموٹ ایریاز میں زیادہ ہے، کیونکہ ہماری سوشو کلچرل انفلوئنس اتنا زیادہ ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنا گھریلو میٹر گھر تک ہی رکھنا، اس کو آگے آپ نے لے کے نہیں جانا. لہٰذا یہ بیکورڈ اور ریموٹ ایریاز میں ہے ضرور، لیکن یہ رپورٹنگ اس کی کم ہے، رپورٹنگ بگ سٹیز میں.

0: इंसान ये करने पर मजबूर होता है। मैं सहने वाले की बात नहीं कर रहा, जो कर रहा होता है उसकी।
1: अच्छा, इसमें जो हमारे शेल्टर होम में आते हैं उस पर बेसिकली मेरी जो एमफिल की रिसर्च है वो भी शेल्टर वुमेन पे है, यानी कि जो ख़वातीन हमारे पास शेल्टर लेती हैं उन पे होती हैं। तो बेसिकली इसके कुछ डेमोग्राफिक्स हैं जो मैंने रिसर्च भी किए हैं, बकायदा मेरी एमफिल की रिसर्च इस चीज़ पे थी। वो मर्द हज़रात जो ख़वातीन से दूर रहते हैं, किसी भी जॉब के सिलसिले में रहते हैं, किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल उनका ताल्लुक किसी ऐसे डिपार्टमेंट से है कि वो उनको जॉब की वजह से, कारोबार की वजह से साथ नहीं रहते, तो इन द मीन वाइल उनकी जो साइकोलॉजिकली उनकी डिवेलपमेंट है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि वो फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते। लिहाजा वो एक दूर रहने की वजह से उनकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस अगर हम करें तो वो फ़र्क होता है एज़ कम्पेयर टू दोज मैन जो कि अपनी बीवी के साथ रह रहे हैं। तो जब कभी वो अपने काम से वापस आते हैं तो वो उनकी जो साइकी होती है वो उन्हें असर करती है और वो वायलेंस की तरफ जाते हैं। फिर उसमें कोर रीज़न ड्रग एडिक्शन की आती है, ड्रग जो जो हस्बैंड ड्रग लेते हैं वो भी अब्यूज़र्स होते हैं। फिर उसके अलावा कुछ चाइल्डहुड इन्फ्लुएंसेस होते हैं, मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी ने बचपन में फेस किया है अब्यूज़ को तो वो बड़े होके भी अब्यूज़र ही बनता है, तो ये पूरा एक साइकिल होता है। तो इसकी मे बी एक वो हम पढ़ते हैं साइकोडाइनामिक अप्रोच ना, उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है कि उस मर्द को बचपन में उनके माँ बाप की तरफ से वायलेंस का शिकार हुआ हो या बुलिंग का शिकार हुआ हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके माइंड में बैठ गई हो और इस वजह से वो अब अपनी बीवी पे भी वायलेंस करता हो। और तीसरा एक सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव भी आता है जो कि हमारा पावर एनालिसिस है कि हमारे यहाँ एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है एज अ होल, तो मेल की अपब्रिंगिंग ही इस तरह से की जाती है कि उसको फील होता है कि ही इज़ डोमिनेटिंग, ही शुड डोमिनेट हर वाइफ, उसने अपनी वाइफ को डोमिनेट करना है। लिहाजा एक सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव बन चुका है ये पेट्रियार्कल सोसाइटी का।
2: दुरुस्त कह रही हैं। वैसे मेरे ख्याल में इन सब की जड़ें पितरशाही माशरे में काफ़ी गहराई तक व्यवस्थित हैं।
3: और अब हमें जापानी खातून के तासरा से भी आगाह कीजिए।
0: जी ज़रूर। ये खातून हैं उसामी मरी साहिबा, जो कि जायका की स्पेशलिस्ट के तौर पर पाकिस्तान में साल 2021 से 2023 तक काम करती रही हैं। वो ख्वातीन के तहफ़ के मराकज और पनागाहें बतौर एडवाइज़र देखती रही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सिनफी तशद्दुद की शिकार ख्वातीन से बात करके वो हैरान रह गईं।
2: अच्छा खलील साहब, ये वही उसामी साहिबा हैं ना जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के मुतासरीन के लिए मंसूबे की मशीर थी?
0: जी बिल्कुल वही हैं। वो अभी भी जायका में पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं।
4: हरी सुनो तो कि नहीं सुगोक उदोरो इतनों का आनो वकाई जो से नो हिगाईशा गा केको ओक ते।
3: मुझे हैरत थी कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा मुतासरीन नौजवान ख़वातीन थी, उनमें से कई अभी गैर शादीशुदा भी थी, लेकिन उन पर ज़बरदस्ती की शादी या वालिदैन की मर्ज़ी की शादी मुसल्लत की जा रही थी। उन्हें वालिदैन के मुंतखब करदा शख्स से शादी करनी पड़ रही थी, उससे नहीं जिसे वो चाहती थी। नापसंदीदगी की वजह से उनमें से कई घरों से भाग गई। दूसरी तरफ ऐसी ख्वातीन भी थी जो पहले से शादीशुदा होने के बावजूद फरार हुई। ऐसे मामलात में मैंने सुना कि भागने से पहले उन्हें फैसला करना पड़ता है कि आइंदा किससे शादी करेंगी। इससे मुझे इदराक हुआ कि पाकिस्तान में ख्वातीन के लिए शादी कितनी अहम है और शादी के अलावा अमली तौर पर तकरीबन कोई मुतबादिल बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए बड़ी चौंका देने वाली हकीकत थी। कई केसेस ऐसे थे जहाँ वालिदैन ने कहा तुम्हें इसी शख्स से शादी करनी होगी, लेकिन खातून चूंकि किसी और को पसंद करती थी और वालिदैन के मुंतखब करदा शख्स से शादी नहीं करना चाहती थी, जबकि अपने पसंदीदा मर्द से शादी कर नहीं सकती थी, इसीलिए वो लड़कियां घर से भागी। इनमें से कुछ खवातीन मुकाबलतन तालीम याफ्ता भी थी। मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि फिर भी वो अपने खानदानों या माशरे के दबाव से बच नहीं सकी।
0: उसामी मरी साहिबा ने बताया कि अक्सर ख्वातीन 19-20 साल की थीं। मेरे ख्याल में इससे कम उम्री की शादी का पता चलता है।
3: जी शादी अनमोल रिश्ता है, लेकिन कहते हैं ना हर काम की एक उम्र होती है।
2: भाई शादी बजाते खुद तो बुरी नहीं, लेकिन अगर कम उम्री में हो, खासतौर पर जबरदस्ती से कराई जाए तो मसला है ना।
3: जी बिल्कुल, अगर कोई खातून या कोई और सिनफी तशद्दुद का शिकार है तो वो आखिर जाए कहाँ?
0: इसके बारे में मज़ीद तफसीलात तो हम अगले प्रोग्राम में बता सकेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब की हेल्पलाइन का नंबर बता देता हूँ। ये नंबर है 1737। इसके अलावा उनके सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए भी उनसे रब्ता किया जा सकता है, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो सीधा आप उनके दफ्तर बजाते खुद जा भी सकते हैं।
3: जी हेल्पलाइन का नंबर है 1737।
2: خلیل صاحب، آئندہ ہمیں یہ بھی بتانا ہے۔

0: होगा के वो सवाल ये होगा कि क्या आप कोई वीडियो या तस्वीर भी साथ भेजना चाहते हैं या सिर्फ तहरीरी पैगाम काफी है। खदीजा ये बताएं कि सिर्फ मैसेज भेजना हो तो क्या करेंगे?
1: तब नहीं वाला ऑप्शन मुंतखब करें। तीर के निशान पर क्लिक करने से आपका पैगाम हम तक फटाफट पहुंच जाएगा।
2: यानी कि मैसेज आपने पहले ही लिख दिया होगा तो वो पहुंच जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और आपने ढेर सारे मैसेजेस भेजने हैं सामिन कि आपको आज की रिपोर्ट कैसी लगी, बड़ी मेहनत की है।
2: हम इंतजार करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे होम पेज का एड्रेस एक बार फिर सुन लीजिए nhk.jp/urdu। इसके साथ ही अपने मेजबानों को अब इजाजत दीजिए।